0: ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ।
1: कैसे हैं वहां हालात दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। हंगरी में बच्चे पैदा करने की पॉलिसीज की वजह से कर्ज में डूब रहे हैं वो कपल जिनके नहीं है कोई बच्चे, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। फुटबॉल वर्ल्ड कप में केप वर्डे दे रही है उरुग्वे और स्पेन जैसी टीमों को कड़ा मुकाबला, कैसे इस छोटे से देश ने फुटबॉल में किया कमाल, दिखाएंगे केप वर्डे से रिपोर्ट। लंदन स्टेडियम में हाल ही में हुए कॉन्सर्ट में गूंजी लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले की आवाज, उनके साथ काम करने वाले ब्रिटिश बैंड और उनकी पोती ने कैसे किया उनको याद, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम भूकंप आया और अपने पीछे तबाही की कहानियां छोड़ गया है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि अब तक करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि तबाही की पूरी तस्वीर जैसे जैसे साफ होगी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। घायलों की संख्या भी हजारों में है और हजारों अब भी लापता हैं। कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो बच गए वो अपने परिवार वालों की अपनों की तलाश कर रहे हैं और एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें लापता लोगों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों की ऐसी भी कहानियां सामने आ रही हैं जिनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बचाव कार्य के दौरान रेस्क्यू टीम ने एक महिला को ऐसी हालत में बाहर निकाला, आगे की तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। जब वो बाहर निकाली गई तो वो होश में थी लेकिन बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि जब इमारत की मंजिलें गिरने लगी तो उन्होंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़ लिया था, इस दौरान उनकी उंगलियां भी टूट गई। कई लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं। एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि अस्पताल में लाए जा रहे घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कईयों का इलाज तो बाहर ही करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स बेहद दबाव में काम कर रहे हैं। एक और डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि जरूरी मेडिकल सप्लाई की कमी है। वहीं खबर है कि भूकंप की वजह से कम 8 अस्पतालों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। वहीं इस मुश्किल वक्त में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने वेनेजुएला की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल केविन जेरार्ड का कहना है कि अमेरिकी सदर्न कमांड वेनेजुएला की राजधानी बचाव कार्य में साथ देने के लिए कारकस पहुंच चुकी है। मेक्सिको, द डोमिनिकन रिपब्लिक, स्पेन और कतर से भी मेडिकल सप्लाई पहुंची है और रेस्क्यू टीम्स भेजी गई हैं। यूएन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर का कहना है कि बचाव कार्य के लिए संस्था ने $15 मिलियन दिए हैं। जमीनी हालात कैसे हैं ऐसे में, बता रही है काराकस में मौजूद बीबीसी संवाददाता वेनेसा सिल्वा।
2: हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। मेयर लोगों को बता रहे हैं कि इस इलाके की सभी इमारतों और बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इमारतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि टीमें 2400 घंटे काम कर रही हैं। लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें इस चौक पर रात ना बितानी पड़े। इस चौक के दूसरी तरफ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो उन लोगों की मदद के लिए जरूरी सामान लेकर पहुंचे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। लोग दवाइयां, बच्चों के लिए डायपर, पानी, खाना और कपड़े लेकर आए हैं जिसे महिलाओं, पुरुषों और अलग अलग उम्र के हिसाब से छांटा जा रहा है और फिर जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है।

0: distribute to those that are in need.
1: दोनों भूकंप 40 सेकंड से भी कम अंतर पर आए थे, जिस वजह से जमीन पर इसका बड़ा असर हुआ है. लेकिन ये कैसे और क्यों आया, बता रहे हैं बीबीसी के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट पल्लव घोष.
2: कुछ ही सेकंड में कंक्रीट और स्टील के ढांचे ढह गए, ऊंची रिहायशी इमारतें जमीन पर आ गिरी और पूरा शहर तबाह हो गया. लेकिन भूकंप इतना विनाशकारी क्यों होता है, इसका जवाब तीन बातों में छिपा है. भूकंप कहाँ आया, कितनी गहराई में आया और उसके ऊपर किस तरह की इमारतें बनी थी. ये भूकंप ठीक उस बाउंड्री पर आया जहां करेबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं. कराकस के पश्चिम में इसी सीमा पर अचानक दरार पड़ने से भूकंप के झटके आए. पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई, जिसके कुछ ही देर बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया. सुनने में ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन दूसरे भूकंप में 3 गुना ज्यादा एनर्जी बाहर निकली. पिछले साल मार्च में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 5400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. वेनेजुएला में आए ये भूकंप जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे आए थे, यानी इनकी गहराई कम थी. ऐसे भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि जहां से एनर्जी निकल रही है उस पॉइंट और सतह पर बनी इमारतों के बीच दूरी कम होती है.
3: यहाँ आने वाले भूकंप आमतौर पर कम गहराई वाले होते हैं, इसी वजह से इनसे ज्यादा नुकसान होता है. अगर भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई पर आए तो उसके मुकाबले 10 किलोमीटर की गहराई वाले भूकंप से ज्यादा नुकसान होता है.
2: 1967 में कराकस में आए जानलेवा भूकंप के बाद सरकार भूकंप के खतरे को ध्यान में रखकर इमारतों के निर्माण के लिए नए नियम लाई, जो पिछले कुछ दशकों से और सख्त हो गए. इसी वजह से राजधानी में हाल के सालों में बनी ऊंची इमारतों को ऐसे भूकंप झेलने लायक बनाया गया है. लेकिन समस्या ये है कि कराकस में रहने वाले करीब 2/3 लोग ऐसी इमारतों में रहते हैं जो इन सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं बनी है. भूकंप के बाद अब तक कई छोटे आफ्टरशॉक्स आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ऐसे और झटके आने की आशंका है. बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट.
1: और आज का दिन भी यूरोप के लिए मुश्किलों भरा है. भीषण गर्मी आज भी लोगों को सताती रही और अब ये हीट वेव क्रोएशिया, जर्मनी, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड तक को चपेट में ले चुकी है. गर्मी इतनी ज्यादा है कि कई देशों में इसे लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं. फ्रांस में सेहत को लेकर चेतावनी जारी की गई ताकि लोग सावधान रहें. इटली में तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहा. इटली के टस्कनी के अस्पतालों में रेड कोट हीट अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन गर्मी को लेकर सबसे गंभीर रेड वार्निंग जारी की गई है. और दुनिया भर में जन्म दर तेजी से गिर रही है और कई देशों की सरकारें इसे लेकर परेशान है. लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है. हंगरी ने तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपनी जीडीपी का 4-5% परिवारों को इसके लिए दिए जाने वाले मदद पर खर्च किया है. लेकिन इसका असर क्या हुआ, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की पॉपुलेशन संवाददाता स्टेफनी हेगार्टी की यह रिपोर्ट.
4: माते और आगे का परिवार शायद वैसा ही है जिसके बारे में विक्टर ओरबान ने ये बोलते हुए सोचा होगा कि परिवार हंगरी के भविष्य की नींव है. 5 सदस्यों वाले अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उन्हें दुनिया की सबसे उदार नीतियों में से एक का फायदा मिला. इसमें बिना ब्याज वाले लोन, माँ को मिलने वाली रकम के साथ साथ कार और घर की मरम्मत के लिए सरकारी मदद शामिल है.
5: जब हमने इसकी शुरुआत की तो लगा कि कहीं न कहीं हमारे फैसले पर अच्छे राजनीतिक माहौल का असर रहा है.
4: लेकिन कुछ परिवारों के लिए ये नीतियाँ एक तरह की जाल बन गई हैं. बारबरा और लेवी ने 4 साल पहले बीबी के लिए ट्राई करना शुरू किया था. वो चाहते थे कि उनके 2 बच्चे हों और इसके लिए उन्होंने हजारों यूरो के बिना ब्याज वाले लोन ले लिए थे. अगर इस साल बारबरा गर्भवती नहीं हुई तो उन्हें जुर्माने के तौर पर ये लोन ब्याज के साथ चुकाने पड़ सकते हैं.
1: अगर हम सफल नहीं हुए तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी. अगर हम सफल नहीं हुए तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी. फिर आखिरी कोशिश यही होगी कि कम से कम हम आर्थिक रूप से सब कुछ ना गंवा दें.
4: कुछ साल पहले तक हंगरी को सफलता की एक बड़ी मिसाल माना जाता था कि कैसे सरकारें लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं. हंगरी कई पीढ़ियों से गिर रही जन्म दर को बदलने में सफल रहा था. अब हंगरी में कुल फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 1.31 है, लेकिन जब ये नीतियाँ शुरू की गई थी तब ये ज्यादा था.
6: एक बार बेबी हो जाए, आपको रकम मिल जाए और आप घर खरीद लें, तब भी उस बच्चे को पालकर बड़ा करने में 18 से 20

0: साल लगते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। बारबरा और लेवी का तीसरा एम्ब्रियो 10 दिन पहले ट्रांसफर किया गया था और अब उन्हें पता चलने वाला है कि ये सक्सेसफुल रहा या नहीं। ये अच्छी खबर नहीं है। हंगरी की नई सरकार का कहना है कि वो उन लोगों की मदद के लिए योजना बना रही है जिन्होंने लोन लिया था लेकिन उतने बच्चे नहीं पैदा कर पाए जितने वो करना चाहते थे।
1: अनिश्चितता बहुत है और वो खुद को दोष देती है। मैं उन्हें हर दिन 100 बार कहता हूँ कि नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये बहुत डरावना है।
0: बीबीसी संवाददाता स्टेफनी हेगर्टी की रिपोर्ट।
2: और फुटबॉल वर्ल्ड कप में छोटे से आइलैंड नेशन केप वर्डे का नाम चर्चा में है क्योंकि उसने स्पेन और उरुग्वे जैसे देशों को काफी कड़ी चुनौती दी है। केप वर्डे जिसे अंडरडॉग माना जा रहा था वो ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। आखिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता पॉल ये और कैमरा जर्नलिस्ट मिशेल वोंडो पहुंचे केप वर्डे।
3: फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई टीमों के आगे बढ़ने की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती जा रही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक देश ने सबको हैरान कर दिया है, वो है केप वर्डे और इसकी टीम को ब्लू शार्क्स भी कहा जाता है। टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए हम राजधानी क्राया में मौजूद बोला प्रा फेंटे एकेडमी पहुंचे ताकि ये जान सके कि ये देश यंग टैलेंट को कैसे तैयार करता है और कैसे निखारता है। फुटबॉल फैसिलिटीज जैसे कि ऐसी आर्टिफिशियल पिच जिसे फीफा ने फंड किया है, ये फुटबॉलर बनने वाले खिलाड़ियों को मॉडर्न प्रैक्टिस और उनकी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। वेटरन कोच सिल्वियरा नेडियो को यहाँ हर कोई जानता है, खिलाड़ियों के खुले मैदान में खेलने से लेकर उसके दुनिया में मौजूद आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल करने तक सिल्वियरा ने सब देखा है और साथ ही खिलाड़ियों के खेल को और शार्प बनाया है।
0: ये ट्रेनिंग सेंटर इस बात का सबूत है कि इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैंने यहाँ 2010 में काम करना शुरू किया था, इसे खोले हुए तब 2 साल हो गए थे। मैंने इस एकेडमी को शुरू किया और उस वक्त वो बच्चे 8 या 9 साल के होंगे जो आज ब्लू शार्क्स टीम का हिस्सा हैं। मैंने यहाँ ट्रेनिंग देना कभी नहीं छोड़ा, मैं यहाँ 15 सालों से ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैंने किसी दूसरी जगह खिलाड़ियों को ट्रेन नहीं किया।
3: एकेडमी के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं 12 साल के जान लुका। लुका इतनी कम उम्र में कई सारे प्राइजेस जीत चुके हैं, उनका सपना किसी दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का है।
4: फुटबॉल खेलना हमेशा मेरे लिए सपना रहा है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कई खिलाड़ियों को खेलते देखा, इससे मुझे प्रेरणा मिली, मैंने खेलना शुरू किया। मैंने प्रा फेंटे एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया। जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया वो है मेसी, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। एकेडमी के बिना मैं टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाता, मैं इतने सारे प्राइजेस नहीं जीत पाता। मुझे लगता है कि एकेडमी के बिना मैं उस मकान पर नहीं पहुंच पाता जहां मैं आज हूं।
3: लुका जैसे कई खिलाड़ी केप वर्ल्डे के फुटबॉल का भविष्य हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज के बाद भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में इस खेल के विकास के लिए अभी और कोशिश करने की जरूरत है। फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट का कहना है कि केप वर्ल्डे का इस वर्ल्ड कप में खेलना इन चिंताओं को दूर करने का एक मौका बन सकता है।
5: ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर फुटबॉल के लिए मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि वर्ल्ड कप में खेलने से एक और फायदा यह है कि हम फीफा से मिलने वाले बोनस के एक हिस्से को स्थानीय स्तर पर फुटबॉल को और विकसित करने में इन्वेस्ट कर सकेंगे। हम ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, खासकर फुटबॉल एकेडमी में लोकल कॉम्पिटिशन को बेहतर बनाएंगे। इस तरह से हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का फायदा उठा सकते हैं।
3: कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल लीग न होने की वजह से ये डर है कि भविष्य के कई स्टार खिलाड़ी देश में रहने की बजाय विदेश जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बीबीसी संवाददाता पॉल ये की रिपोर्ट।
2: और आशा भोसले भले इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आवाज उनके चाहने वालों के जहन में आज भी गूंजती है और हाल ही में उनकी आवाज गूंजी लंदन स्टेडियम में। दरअसल यहां उनके आखिरी गानों में से एक द शैडोई लाइट बजाया गया जिसे उन्होंने ब्रिटिश बैंड द गोरिल्लास के साथ कोलैबोरेशन में गाया था और इस दौरान स्टेज पर बैकिंग वोकल्स देने के लिए आई आशा भोसले की पोती जानाई भोसले। बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन की यह रिपोर्ट जिसे फिल्माया है एहसान यूनुस ने और प्रोड्यूस किया किंजल पांड्या वाक ने।

0: I can't let that
1: मैं इसे उनके लिए अधूरा नहीं छोड़ सकती हूँ. मैं उनकी विरासत अधूरी नहीं छोड़ सकती. तो ये मेरा तरीका है उनके अधूरे कामों को पूरा करने का.
2: ये अच्छा है कि ये प्यारा परिवार यहाँ है. मेरा मतलब है कि मुझे लगता है वो इस गाने से खास कनेक्शन महसूस करते हैं, और मेरे हिसाब से ये आखिरी चीज थी जो उन्होंने की.

0: हम उनके साथ काम करना चाहते थे और खुशकिस्मती से हमें उनसे मिलने का मौका मिला।
1: किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो इतना सम्मानित, शालीन, सुंदर और उदार।
2: वो हमेशा बैंड के साथ अपना गाना परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया। तो हमें बताइए कि आप इस कॉन्सर्ट में क्यों आए हैं, क्योंकि आपके परिवार के लिए तो ये एक बहुत ही पर्सनल पल है ना?
3: असल में ये गाना पिछले साल सितंबर में परफॉर्म किया जाना था, उन्हें यहाँ होना था और हम यहाँ पहुँच भी गए थे। शो से दो दिन पहले हम लंदन में थे, लेकिन बदकिस्मती से उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। और उनके लिए ये बहुत दुख की बात थी कि वो ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। मैं उनके लिए इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती, मैं उनकी विरासत को अधूरा नहीं रहने दे सकती, तो मैं यहाँ आकर उनके अधूरे काम को पूरा कर रही हूँ और उस शानदार बैंड के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मेरी दादी को ये बेहतरीन गाना दिया।
2: शैडोवी लाइट के नाम के इस गाने में वो मौत के बारे में गाती थी। अब ये सोचकर अजीब लगता है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है।
1: शायद उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास था, और आप जानते हैं ये अच्छी बात है कि परिवार यहाँ मौजूद है। मेरा मतलब है कि वो इस गाने से कनेक्शन महसूस करते हैं, और शायद ये उनका आखिरी काम था।
3: वो सभी इससे इतनी अच्छी तरह कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि लोगों ने इस तरह का दुख सहा है और डेमन भी इससे गुजर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने ऐसा एल्बम बनाया।
2: तो वो कौन सा आइडिया है जिसे आप अपनी एल्बम में बता रहे हैं?
1: असल में ये नुकसान और सफर की बात है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, यानी अलग अलग संस्कृतियों का मेल, महत्वाकांक्षा और कई पीढ़ियों का जुड़ाव है।
0: हम पहले एक बार भारत जा चुके हैं और वहाँ घूमकर वापस आ चुके हैं। हम दूसरी ट्रिप का प्लान बना रहे थे और उस पर काम भी शुरू कर दिया था।
2: इस एल्बम में मौत और मरने के बाद जिंदगी से बहुत सी जुड़ी बातें हैं, है ना?
3: इस एल्बम की खूबसूरती यही है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो थी। उन्होंने इसे अपने अंदाज में गाया, सब ने मिलकर इसमें जान डाल दी। उन्होंने अपने स्टाइल में काम किया और बैंड ने अपने स्टाइल में, और मिलकर ये बहुत शानदार बना। मेरा स्टेज पर होना एक जश्न की तरह है, ये उन्हीं के लिए है, इसीलिए मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है।
4: This one's probably my favorite one, and it's also

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तयाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।